0: आप सुन रहे हैं YFM 105.4।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: You're listening to Vibe FM 105.4.
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

अखा ना जरा भी अखा हो तेन देख के बदल गई तोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी नी चढ़ी जाती लोर लोर लोर लोर जी पहला लंघ दी दिहाड़ी सी पोर जी।

आके अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी इस हवा की तरह।
1: आप सुन रहे हैं वाइब FM 105.4।

0: शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: YBFM 105.4. You're listening to YBFM 105.4.

0: दुबई और उसके अतराफ में आजान जोहर का वक्त हो चुका है।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाह

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: You're listening to Vibe FM 105.4.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।